सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावा पहाड़ पहाड़ जड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावा वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरो तां आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत न पावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा साव उदे सुभा नू इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहना नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारे हो मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार हां मेरी झोली दे विच गुणा दी दाद पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वोहे

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वडियाई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया

अजे कुंड कढे आपां सारिआं जब नाची तब घूंघट कैसा जे हुण गुरु दे सामने आ ही गए रूह नाची उठी आ ते हुण कुंड कढ के नहीं उतना ही आखो जितना गुरु अमरदास कह रहे होए।

0: सतगुर पास पूरे सतगुर पास पूरे
1: सतगुर पास सतगुर पास
0: जी पूरे सतगुर पास पूरे सतगुर पास पूरे
1: सतगुर पास पूरे सतगुर पास
0: ओए नमाणी तै पवा नमाणी होके नमाणी आखा अपने आप नू महाराज मैं नमाणिया मेरा कोई मान नहीं साची लेवे बिन ए नमाणिया दे महाराज तेरे चरणा विच टैगी आणके इनू शब्द बख्शे शब्द लाग सवारिया इनू शब्द दे नाल जोड़ दे जिदे नाल एदा जीवन सवर जावे ते बाबा फरीद जी कहिंदे ने मैं ते भुलिया रहा कि जे किते तै पिया नीवा हो गया धरती ते मत्था टेकिया खुदा नू नमस्कार कीती ते किते मेरी चिट्टी पग ना मैली हो

0: कुदरत कवन हमारी ज्यों बलावे त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की आत प्यारी साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। तनता दे जोग जे जो तन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दे दर्शन दरदार करके तन हो रहे हो। भाई गुरुदास जी का एक पावन बचन सारे पढ़िए। सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है,
1: सतगुर दर्शन धन है, सतगुर

0: सवेरे 7 बजे का टाइम दिता है कि असी इशनान करके मेरिया भैं बच्चे वीर गुरसिख प्यारे कुछ कहना कि असी इशनान करके मेरिया भैं बच्चा वीर गुरसिखा ने ककार इथो मिल देने ने कृपान कड़ा कशहरा कंघा सारे फ्री मिलने ने कोई पैसा नहीं लगना गुरु जी सिखो कभी सिर कीमत दे के अमृत मिलता सी कोई द्वारकापुरी तो तुरदा सी कोई जगन्नाथपुरी तो तुरदा सी कोई बिदर तो तुरदा सी कोई लाहौरों तुरदा कोई दिल्ली तुरदा है ते आन के अमृत सिर दे के लेना पैंदा है हुण ते सिखो आवाजा मार मार के आवाजा मार रहे कलयुग दी अंधेरी आ गई है आओ अपने गुरु दे लड़ लग जाओ कृपाना भी साडे कोलों लै लो कशहरे भी साडे कोलों लै लो वैसे तुहानू कोई घाटा नहीं तुहाडे घर सतगुरु ने बहुत कुछ बख्शिया है मगर सिखी दे प्रचार लई गुरु प्यारियां रूहां ने जो अपने अपने दसवंध विचों फंड कढे ने उहदे विचों ककार इत्थे फ्री आ जाणे ने कृपान कड़े कशहरे कंघे सारा कुछ आप जी नूं फ्री मिलना है सतगुरु कृपा करे रहमत करे आप जी अमृत छके गुरु वाले बणो फिर ये लोग सुखीए सहेले नानक हर प्रभ आपे मेले दीआं दातां मिलणगीआं भुल्ला ना चितारनीआं असीस दिओ वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
2: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहिबंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद है भी सच नानक
1: सच
2: गज के आखो जी आद सच जुगाद सच है भी सच
1: नानक सच
2: फिर जुड़ो जी आद सच जुगाद है भी सच नानक होसी भी सच अगम अगोचर सच साहिब मेरा अगम अगोचर सच साहिब मेरा सच

वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़फ पैदा हुई हो, ऐनी वो तो बिना उदास हो गई है, सिर देन नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे तेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, ये 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसीं वी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

लो बलबाया मोरी रुण चुन लाया भैने सावण आया। ते पिछे जाके एक बचन मेरे साहब ने बड़ा सुंदर किया है, कहिंदे एक दिन फिर उस सुपने विच आ गया, आखो सतनाम श्री, आया सुपने विच, ध्यान देना एकाग्रता बख्शो, सुपने च आया, सुपने च, सुपने आया, बोलो सुपने, ए बड़े दिनां दी कहिंदी सी मैं दर्शन करने दर्शन करने, उस सुपने च आया, सुपने च आया, ते कुछ छिन दर्शन दीदार दे के कोल बह के चले गया, सुपने आया पी गया। जिन्ना चिर नहीं सी वेख्या उन्ना चिर गल होर सी, सुपने विच ही झलक विखा के चले गया। हुण रोंदी आ मैं जल भरिया, रोए अखा च जल त्रप त्रप वगी जांदा है, ते कहिंदी आ हुण करां की, सुपने च ते मिलिया चले गया, हुण आए ना सका तुझ कन प्यारे, भेज ना सका कोई तेरे कोल, ना कोई सुना भेज सकदियां ना मैं आ सकदियां, क्योंकि पता नहीं तू रहिंदा कित्थे आ। हुण ते रात दिन किसे वजोग च कहिंदी आ धन सो

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चोर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या वो दे सामने उदी फोटो दे चोर करदा सा कहिंदा जी उदी सामने उदी फोटो दे चोर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चोर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालक ते धरती ते एको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जिते चौर हो सकता है होर किसी चौर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखां गुरमुख प्यारियां ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उहने चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदिआं दास ने पहलों मारी फोटो भवां के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान उहनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे हो बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्स दिखाए जी एक छिन दर्स दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवा नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु
1: नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक
0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
1: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
0: सिद्ध कहिंदे ने असी सारी मंडली ने तुहानू धन कहा, हरिद्वार दे पांड्या ने तुहानू धन कहा, जगन्नाथपुरी आलिया तुहानू धन कहा, मुल्तान दे पीर तेरे चरणा ते डिग पे, मक्के मदीने वाले गढ़ बगदाद वाले तेरे चरणा ते डिग पे, आखिर राज की ध्यान दे जरा, आखिर राज की शक्ति की। ते धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने सिद्धो खोजत खोजत अमृत पिया, बोलो खोजत खोजत लभदिया लभदिया वह चीज लभ गई जिदे नाल फिर सारे मसले हल हो जांदे ने। खोजत खोजत अमृत पिया, अमृत पीता मैं जिदे करके जय जयकारा हो गई, जिदे करके जय जयकार हो गई, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, मन तन विच परमेश्वर वस गया। ते फिर सिद्धा ने अगला सवाल किया, ये जिहड़ा अमृत आ बड़ा कीमती आ? साहिब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां बहुत कीमती आ। आखिया फिर दिता की कीमत की दिती दे? ते बड़े प्यारे बचन गुरु नानक साहब ने जो उथे बोले, बड़े प्यार दे बचन ने, कहिंदे खिमा गई मन सतगुर दिया। अमृत नहीं उतरा मिलता जिना चिर मन नहीं अपने गुरु दे अगे अर्पण करना पैंदा, जिना चिर मन नहीं जीव आत्मा वेच देंदा। आ लोकी बहुते कहिंदे मेरा मन नहीं करदा, मेरा मन नहीं मन्या, मेरे मन की अजे परिपक्वता नहीं हुई। गुरमुख प्यारे होए ते रोगी होए नू, इनू कोड़े होए नू, इनू विगड़े होए नू, मन बे

बारक मुख मांगे सो देना, बारक मुख मांगे सो। ए बन गया मेरा पुत, ते आज तो हुण जो मेरा पुत मुंह चो मंगे इनू देना है। ओ आर्डर करके मुड़िया, उन्हें कह दिता, गया कोल गल नाल फिर मत्था चुमया, गल नाल लाया ते आख्या, मैं कह दिता है दाता देने वाले नू, सचेत होके बैठो, मैं कह दिता है। आके गए ना कि बारक मुख मांगे सो देना, उन्हें आख्या पिता कृपाल आ गया है कीनी, बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें ते ए गल कह के मुड़िया, ते पिछे बालक ने आख्या मेरी ते हुण भोखी कोई नहीं रह गई, मैं मंगा की। नानक बारक दर्स प्रभ चाहे, हुण मुक गए ट्रैक्टर मंगने, मुक गईयां गड्डियां मंगणियां, मुक गईयां दुनिया दीयां दौलतां, हुण ते नानक बारक दर्स प्रभ चाहे। बोलो नानक बारक, हुण ते इहनूं पता लग गया असली दात की आ। देख जीवां गुर तेरा दर्शन दे।

जे विपता वेले कहना है कि गुरु मेरे नाल रवे, जो कोई काम पैंदा ते उदो कहना सतगुरु मेरे कोल जे तुसी, मैं मानदा कि तुसी हाजर नाजर जे मेरी रखिया करो, ते माड़े कर्म कर लगे भी सोचा करो कि गुरु ते 24 घंटे उत्थे शब्द लिखता सदा, ए नहीं कि एक घंटा मेरे नाल आ गुरु, जो मैं पाठ करना उदो मेरे गुरु नाल आ। ता ही ता शब्द गुरु दिता वा कि जय जय मन तू धामदा, बोलो जय जय मन तू तै तै हर तेरे नाले, जिथे जिथे तू जाना है जिथे जिथे तू विचरदा वा गुरु तेरे नाल रहिंदा है। ते चेता करो बुरा कर्म कर लगे भी गुरु चेते रहिंदा है, गुरु कोल रहिंदा है। ते ए छोटे जे बच्चे दे सिर ते खलोती सी सरकार, ते अज फिर

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जोगाद सच खैपी सच नानक खुशी पी सच

सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खै ती सच नानक खुशी पी सच

कीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर मधुवै वाहि गुरु साहिब जीयो फरीदा दर दरवेशी काखड़ी चलना दुनिया पत बन उठाई पोटली किथे वंजा कत फरीदा दर दरवेशी गखड़ी चलना दुनिया पत

वैद पागल का इलाज करने लिए जाता है तो मंदा ही बोलता है। उस वैद ते कदी कदी वह हथी भी पै जाता है ते वैद अपना गुण ना छड़े ताई चंगा वैद है वह ताई सुगट ते सुजान वैद है ते जे उस पागल का इलाज करदा करदा अपने गुण नू ही गवा पवे ते फिर वह वैद कादा हो जा। लोग कहणगे उह ते है पागल पर तू ते वैद है ना तेरे कोल ते गुण है। तो खैर भगत फरीद साहब जी कहन लगे दरवेशां नू लोड़ी है रुखां दी जी रांद। एक बेनती मैं इस संबंध दे अंदर होर भी करदा चला दरवेश लिबास पा के बनना बड़ा सौखा है बाहरों बनना इनू मैं दूजे लफजां दे राही बयान करा लिबास पा के दरवेश अखवाउणा लोकां दे कोलों बड़ा आसान है ते अंदरों मन करके दरवेश बन जाना उन्ना ही कठिन है उन्ना ही महान है। जिन्ना जल्दी तन धर्म की दुनिया में चला जाता है ना उन्नी जल्दी मन धर्म की दुनिया में नहीं जाता ते जिहदा मन धर्मी बने ही ना मन धर्म नू कबूल करे ही ना मन धर्म दे नेम नुकते अपनावे ना वह बाहरों किस तरह का पहरावा बनाई रखे कुछ अखवाई जाए वह कादा दरवेश होया। हां लोग तेनू लख सलामा करन पर खुदावंद करीम दे घर दे अंदर परवान नहीं पएगा क्यों क्योंकि गुरु तेरे अंदर दा सुधार मंगदे ने गुरु तेरे मन दा सुधार मंगदे ने ते मन दा सुधार करन लई गुरबाणी दा उपदेश है। अगा भगत जी कहन लगे फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी चलना दुनिया पत मैं वेख्या लोग चल रहे ने आम दुनिया दारा वांग किवें चल रहे ने दुनिया दारा वांग ए ते बेनती मैं कर ही चुका ना कि बाहरों दरवेश ने चलना ही दुनिया वांग है बाहरों दरवेश सच्चा होवे जो गृहस्थी होवे बाहरों दरवेश सच्चा होवे जो तियां पुत्रां दा पिता होवे बाहरों दरवेश होवे जिहदे घर दे अंदर पत्नी होवे बाहरों दरवेश ओ है जो अपने महल माड़ियां दे अंदर रसदा वसदा होवे पर ओ दरवेश केवल बार बार दा अंदरों दरवेश ओ है जो सच दे नाल जुड़िया होवे बुराइयां तो बचिया होवे गुणा दी माला परो के अपने मन दे अंदर वसाई होवे अंदरों दरवेश हो। चलना दुनिया पत बाहरों ते चलना है दुनिया दारा वांग अंदरों वखरे होके चलना है अंदरों दुनिया दारा वांग नहीं चलना अंदर दुनिया चुगली निंदा ईर्ष्या दी भरी है पर दरवेश दे अंदर ना चुगली ना निंदा ना ईर्ष्या होवे अंदरों दुनिया दे अंदर खोट है पर दरवेश दे अंदर कोई खोट ना होवे अंदरों दुनिया दे अंदर अगर मन करके वेखिए ना आम दुनिया नू ते दुनिया दे अंदर कोई अपना है कोई बेगाना है जेड़े अपने ने उन्हां नू प्यार जेड़े बेगाने ने उन्हां तो नफरत पर जेड़ा दरवेश है उहदी दुनिया दे अंदर सारे अपने ने उहदे वास्ते कोई बेगाना नहीं है उहदे वास्ते सारे ही अपने ने उहदे मन दे अंदर सारिआं वास्ते जगह होवे कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं कोई यहूदी नहीं कोई बोधी नहीं कोई पारसी नहीं ते जड़ा बड़ी सोच नू सीमित करके चल रहा है बड़े छोटे दायरे वे चल रहा है खिमा चाहवांगा ओ सच्चा दरवेश जिस तरह का गुरु नानक साहब जी ने बनाया है उस तरह का दरवेश नहीं होएगा। जे गुरु नानक साहब जी का उपदेश है सारिआं लई सांझा खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वरना को सांझा ते रब दे सच्चे दरवेश का उपदेश भी चौं वरना लई सांझा है उहदे निगाह दे अंदर कोई बेगाना कोई अपना नहीं कोई इलाके दी नफरत नहीं कोई अपनी जथेबंदी दी नफरत नहीं फिर उहदे लई भी सारे बराबर ने। भगत जी कहन लगे बन उठाई पोटली किथे वंजा कत ए जिहड़ी बुराइयां दी पोटली आम लोग सिर दे उत्ते रख के चल रहे ने इहनू छड के दरवेश बनिया जा सकदा है ए जिहड़ी बुराइयां दी गंढ बुराइयां दी पंड लै के असी सिर दे उत्ते चल रहे हां। सतगुरु गुरु नानक साहब जी नू पढ़ो गुरबाणी विचों ते गुरु नानक साहब जी ने किधरे भी एक बाणी दे अखर दे अंदर ए संदेश नहीं फरमाया कि तू संगत करिया कर तेरी चमड़ी दा रंग बदल के ना चिट्टा हो जाएगा तू संगत करिया कर बाणी पढ़िया कर नितनेम करिया कर या गुरमत दे असूलां नू मन्निया कर ते तेरे नक्शो निगार जेड़े करूप ने ओ सरूप बन जाणगे तेरा कद बढ़ के लम्मा हो जाएगा तू सुनखा बन जाएगा किधरे गुरबाणी दे अंदर इस तरह का वचन आया जदों भी आया है उदों मन दे संबंध विच वचन आया है संगत करेगा मन बदलेगा बाणी।

0: पढ़े विचारेगा मन बदलेगा, बाणी दे आसरे चलेगा मन नू रस मिलेगा। गल ही गुरबाणी दे अंदर प्यारे मन दी चलदी है। ते दरवेश ओ है जो अंदरों बाणी दे नाल जुड़े है अंदरों। फिर अखीर ते मैं एक बेनती होर भी करदा चला, साडे कोल कोई इस तरह की एनक ते है नहीं पे जो अखां दे उत्ते लाईए ते जेड़ा साडे सामने खड़ा है ओ नजरा तक लैन के सच्चा है जां झूठा है। साडी अपनी इतनी तौफीक नहीं, अखां दे अंदर इन्नी बरीक बीनी नहीं, पर जे अपनी समझ नहीं ते समझ देन वाले गुरु नू पुछना ते कोई मेड़ा नहीं ना। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी चार अखर बाणी दे उस कसवटी नू उस बंदे दे उते ला के परख लिया करो कि ए सच्चा है जां झूठा है। दा जवाब तुहानू अपने आप मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा जे गुरबाणी दे अनुसार गुरबाणी दी कसवटी दे नाल ला के परखोगे। क्यों परखन दी लोड़ है? क्योंकि सुनियारा सोने नू हाथ दे अंदर पकड़दिया ही ओ अंदाजा ते ला लैंदा है कि सोना असली है जां सोना नकली है। पर अपनी उदे कोल एक हुंदी है परख, एक हुंदा है पत्थर दा निक्का जिहा वट्टा जिहनूं कसवट्टी कह दिंदे ने। ओ आम पत्थरां वर्गा पत्थर नहीं, थोड़ा खास पत्थर हुंदा है, हुंदा पत्थर ही है। सोने नूं उदे उत्ते कसाउंदे ने, उदे रंग नूं वेख के उहनां नूं समझ पै जांदी है असली सोना है जां नकली सोना है। प्यारे जे खुद ना समझ पवे असल ते नकल दी पहचान करन वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे उत्ते उहनूं ला के वेख लिया करो। ए बंदा सच्चा है तां समझ पै जाएगी, जवाब आ जाएगा, ते जे झूठा है तां समझ पै जाएगी। एक बेनती मैं होर करदा चला आप संगत दे सामने, जिन्हां दे कोल कोई कला है, कोई गुण है, कोई रिद्धि है, कोई सिद्धि है, कुछ भी किसे दे पास है, वो सारे सत्कार योग ने, मुबारक ने। पर जिथों ये सारे गुण सानू मिल रहे ने उहदा नां है निरंकार, उहदा नां है परमात्मा। जिस दी झोली दे अंदर भी जो किसे नू दात मिली वो मिली कित्थों? है निरंकार दे कोल। हुण जिन्ना पानी झीलां दे अंदर, तलाबां दे अंदर, छपड़ियां दे अंदर, सरोवरां दे अंदर, नदियां दे अंदर, दरियावां दे अंदर आप वेख रहे हो, विद्वाना ने पानी दा मरकज, पानी दा केंद्र सागर नू मन्निया है। और पानी सागर दा ही है, भावे वह छपड़ां दे अंदर है, तलाबां सरोवरां दे अंदर है, झीलां दे अंदर है, या दरियावां दे अंदर है, पानी दा मरकज सागर है, सागर दा ही पानी सारियां दे अंदर है। किसे दे कोल कोई ताकत, कोई रिद्धि, कोई सिद्धि, कोई गुण है ते वह गुण सारे दे सारे परमात्मा कोलों ही आ रहे हैं। ते धन श्री गुरु नानक देव पातशाह तो लैके दसे गुरु साहिबाना ने सानू सीधा परमात्मा दे नाल जोड़िया, सीधा परमात्मा दे नाल। मुबारक ने वह छपड़िया जिन्हां दे कोल पानी है, पर साडा छपड़िया दे नाल संबंध नहीं, सागर दे नाल संबंध है। मुबारक ने वह नदियां, मुबारक ने वह दरिया जिन्हां दे कोल पानी है, वह सत्कार योग ने, चलो उन्हां दा पानी फसलां नूं हरियां भरियां करदा है, लोकां दी प्यास बुझांदा है, मुबारक ने। पर जिथों उस दरिया नूं पानी मिल रहा है उहदा शुक्रिया अदा करना कदी ना भुलो, और उन्हों ही अपना मुरशद मनो, उहदे नाल ही जुड़ो। तुहाडी श्रद्धा नूं कदी चकना चूर होना ही नहीं पएगा, तुहाडी श्रद्धा कदी टुटेगी नहीं। अधूरियां दे नाल जुड़ के श्रद्धा टुट जांदी है, पूरियां दे नाल जुड़ के कदी श्रद्धा टुटदी नहीं है। ते साडे वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नालों वड्डा कोई नहीं, इन्हां नालों पूरा भी कोई नहीं। भगत फरीद साहब जी दे ए मां वाक जिन्हां नूं आधार बना के मैं कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख रखण दा निमाणा यतन कर रहा सां।
1: हस्त अलंबन देहु प्रभ कर तो उदर गोपाल, मोह निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल। जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, तिस राखो हो किरपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। वाहे गुरु साहिब जीओ किजना बूजै किजना सूजै दुनिया गुजी पा साईं मेरे चंगा कीता नाही ताहां हम बेद जाहे फरीदा जे जाना तिल थोड़े

एक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निकी गोद का आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, मन बिरतियां एकागर करके बहन अते सुनन की कृपालता करो। आप सरवण करते आ रहे हो रोज सवेर दे वकत भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों लड़ीवार विचार लड़ीवार कथा। अज जो श्लोक आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, पहला श्लोक है फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरे, कि जे मैं जानदा हुंदा कि तिल थोड़े ने ते जल्दी जल्दी बुक भर भर के दूसरे पासे रखन दे नाल सुटन दे नाल इन्होंने जल्दी खत्म हो जाना है, ते मैं बड़ा सोच विचार के संभल संभल के कदम पुटदा बुक भरदा ताकि मेरे भांडे विचों तिल मुक दे ना। हकीकत यह है फरीद जी जिधर इशारा कर रहे ने कि मनुख नू जदों अपने सवासां दी कीमत समझ विच आउंदी है कि मेरे सवास अमोलक ने, ते जिहड़े सवास इह अज तों पहलां लै चुका है, जिन्ने सवास गुजार चुका है, उन्हां पिछलियां बीतियां होयां सवासां दे अंदर इह वेखदा है कि मैं कमाया की ते गवाया की, ते नजर इह आउंदा है कि गवाया सब कुछ है ते कमाया कुछ भी नहीं। समझ ये आउंदी है कि सवास गवाई गवाए ने, इन्हां सवासां दे नाल मैं कोई चंगा वणज व्यापार कीता हुंदा, रब जी दे गुणां दा संग्रह कीता हुंदा, वाहिगुरु मंत्र दा जाप कीता हुंदा, ये कुछ ते नजर आ नहीं रहा, ते सवास सारे गवाए हुए गुम हुए राख दे ढेर दे अंदर पाए हुए नजर पै रहे। पिछले बीते समय दे उत्ते तौबा कर रहे ने, उपदेश ते सानू ही दे रहे ना भगत फरीद साहब आप ते उस महासागर परमात्मा दे अंदर मिलके अपेद हो ही चुके ने, साडे लई उपदेश है पिछले बीते हुए समय दे अंदर जो गुनाह हुए जो सवास संभाल ना पाया उन्हां वास्ते पश्चाताप कर, उन्हां गुनाहां दे उत्ते तौबा कर, ते अगों वास्ते अपने मार्ग नूं सवारन दा आप यतन कर, अगों वास्ते रहिंदे सवासां दी संभाल करन दा यतन कर। जिस तरह धन तुहाडी जेब दे अंदर है, तुहाडा अपना ही कमाया होया धन तुहाडे पास है, हुण मर्जी भी तुहाडी है कि उस धन दे नाल बाजार विचों जाके तुसीं अति कौड़ी चीज खरीद के लैओ, ते तुहाडी मर्जी भावे अति मिठा पदार्थ बाजार दे अंदर जाके खरीद के लैओ। एको ही मार्केट दे अंदर जान लेवा पदार्थ मिलदे ने ते जान देवा पदार्थ मिलदे ने, जो तंदुरुस्ती देण वाले ने पदार्थ ओ चीजां वस्तां मिल जांदियां ने बाजार विचों, ते जो रोगी बनाउण वालियां ने चीजां वस्तुआं ओ भी मिल जांदियां ने बाजार विचों। शहद खरीद के लियाना है, मिश्री खरीद के लियानी है, कोई होर मिठास खरीद के लियानी है, तुहाडी मर्जी है, पैसा तुहाडा है, सोच तुहाडी है। अगर कौड़ा तुम्मा खरीद के लियाना है ते तां भी सोच तुहाडी है, पैसा भी तुहाडा है, मर्जी तुहाडी है, क्योंकि सवासां दा सरमाया तुहानू खुदावंद करीम परमात्मा ने दे दिता है। इस धन दे नाल खर्च करके तुसी वैस्या द्वारे जा सकते हो, पब्बा क्लबा दे अंदर धन नू खर्च करके जा सकते हो, इसी धन दे नाल जुवारी बन सकते हो, इसी धन दे नाल अयाशी बदमाशी दे अड्डे कायम कर सकते हो धन दे नाल, ते इसे ही धन दे नाल आपां
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਣੇ। ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਖਰਚਣਾ ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਖਰਚਣਾ ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਧਨ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਧਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਧਨ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵਰਤੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਵਰਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੈ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਜਾਚਕ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੋ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਰ ਖੜਕਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ, ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜੇ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾ ਮਤ।

अकल बारीक हुई जाती है। बंदे दी अकल दिन पर रात बारीक हुंदी तुरी जा रही है। बरीकियां नूं खुलना, समाजिक बरीकियां नूं खुलना ये मनुखी अकल दे पास है। अकल बारीक हुई जाती है, रूह तारीक हुई जाती है। तारीक दा मतलब हुंदा है हनेरा। अंदर हनेरा वधदा जा रहा है ते बाहरों चानना वधदा जा रहा है। बाहरों ज्ञान साडा चंद्रमा दे उत्ते जाके झंडे चुड़ा आया है। अंदर साडे मस्या दी काली बोली कोपा रात है, हनेरी रात है। एक होर बोल मेरे सामने आ जांदा है, ओ अदीब कहिंदा है इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जिहनों में अंधेरे हैं सड़कों पे उजाले हैं। अगर सड़कां नूं वेखिए ते रात बिल्कुल दिन दे बराबर नजर पै रही है, रोशनी और चौगिरदे दे अंदर रोशनी। अगर जिहनी तौर दे उत्ते मनुख नूं नेड़े होके वेखिए ते काली बोली मस्या दी रात कोप हनेरा नजर पै रहे, जिहनों में अंधेरे हैं सड़कों पे उजाले हैं। भगत फरीद साहब जी भी कहिंदे ने के कन मुसल्ला, कहन लगे तेरे कंधे दे उत्ते मैं मुसल्ला रखिया वेख्या। मुसल्ला मुसलमान उस कपड़े नूं कह देंदे ने जिस कपड़े नूं हेठां वछा के ओह पंज वक्त नमाज पढ़दे ने। ओह कपड़ा ओह नमाज पढ़न लई रखिया जांदा है, दूजियां कम्मां लई नहीं। ओहनूं मोढ़े दे उत्ते चुक के रख लैंदे ने, ओहदा नाम मुसल्ला है इस्लामी शरा दे मुताबिक। आखिया कन, कन मैंने कंधा, कन मुसल्ला सूफ गल, काले रंग दा चोला भी गिटियां तक, तेरे जामे नूं मैं वेख रहा, तेरा लिबास चोला गिटियां तक लम्मा वेख रहा। सूफी संत ने ना जेडे ओह काले रंग दा चोला पाउंदे ने ज्यादातर। आखिया कन मुसल्ला सूफ गल दिल काती गुड़ वात, वात मैंने वाक, वाक मैंने बोल, जेड़ी जुबान दे बोल बोलदा है बोल भी तेरे बड़े मिठे मिठे ने। पर ए सारियां चीजां हुंदियां सुंदियां जदों मैं तेरे अंदर वेखदा ते कहिंदे ने दिल काती, तेरा दिल कैंची दा काम कर रहा है, कैंची दा काती मैंने कैंची, ते कैंची कपड़े नूं कटना ही जानदी है, सवारना नहीं जानदी। सुई धागा कपड़े नूं पोशाक बनाउंदा है, पेंट बनाउंदा है, पजामा बनाउंदा है, कुर्ता बनाउंदा है, कुछ कुछ होर बनाउंदा है, सुई ते धागा दोवें मिलके। पर कैंची दे कोल बनाउणा नहीं, कैंची दे कोल ढाउणा है। कैंची कपड़े नूं केवल कतरदी है, कपड़े नूं पोशाक दा रूप नहीं देंदी। इह गल वखरी है कि कैंची दी अपनी जगह है ते सुई धागे दी अपनी जगह है, इह गल वखरी है। कैंची वांग तू अपने दिल दे नाल लोकां नूं कट्टण दा यतन कर रहा, सोच तेरी है मैं दूजे दा कारोबार कट दिया, दूजे दी इज्जत कट दिया, दूजे दा नाम कट दिया, ते कटना कैंची दा काम है। दूजे दा नाम मेरे नालों अगे क्यों जा रहा है, मैं नाम कट दिया। दूजे दा कारोबार मेरे नालों अगे क्यों जा रहा है, मैं ओह कारोबार कट दिया। दूसरे दा धन बहुता क्यों है, ओह कट दिया। दूसरे दा परिवार इतफाक दे अंदर क्यों है, मैं परिवार नूं कट दिया। कुछ बंदे इस तरह दे हुंदे ने किसी दे परिवार विचों एक वार निकलदे ने ते उहनां दे निकलण दे नाल परिवार बिखर जांदे ने, परिवार टुट जांदे ने। कुछ इस तरह दे हुंदे ने परिवार विच उहनां दे पैर पैंदे ने ते परिवार जुड़ना शुरू कर देंदे ने। कुछ जोड़न दा काम करदे ने, कुछ तोड़न दा काम करदे ने। भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने दिल काती गुड़ वात, मुंह दे बोल ने गुड़ वर्गे मिठे, दिल तेरा कैंची दी तरह चलदा रहिंदा है दिन पर रात। कहन लगे बाहर दिसे चानना दिल अंधियारी रात, बाहर तेरे चानना है और अंदर कोप हनेरा है, बाहर वाकई चानना है। जिहड़ी जगह ते असीं बहना है, ऑफिस दे अंदर काम करना है, रोडां दे उत्ते चलना है, घर बार दे अंदर साडे सौण बहन दा हर टिकाणा, उत्थे असीं चानने दा इंतजाम कर लिया है, प्रकाश रवे इंतजाम कर लिया है। जिथे बिठाउणा चाहुंदे आ दीन दुनी दे मालक परिपूर्ण परमात्मा नूं, अंदर ध्यान मार के वेखो कोप हनेरा। फिर मैं एक होर बेनती करदा चला, अगर कोई साडे घर दे अंदर मेहमान आवे ते आवे भी उचेचे तौर ते, उस मेहमान दी आमद दे अंदर आप अपने घर नूं सवारोगे जां घर नूं बगाड़ोगे, इहदा जवाब अपने कोलों ही लिओ। घर नूं सवारोगे जां घर नूं बगाड़ोगे, उस दिन घर दी उचेची सफाई होएगी या उस दिन घर दे अंदर बाहर दा सारा कूड़ा कर

फरीदा जिन लोयन जग मोहिया से लोयन मैं डिठ कचल रेख ना सहंदया से पंखी सुवे बहिठ फरीदा कुकेंदया चांगेंदया मत्ती देंदया नित जो शैतान वंजाया से कित फेरह चित

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग, मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र कोत दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो, पाप लड़ीवार कथा सरवण करते आ रहे हो भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचो। भगत फरीद साहब जी दे जो श्लोक अज आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, उन्हां श्लोकां विचों पहला श्लोक फरीदा कुकेंदियां चा गेंदियां मती देंदियां नित, जो शैतान वंजाया से कित फेर चित। भगत जी कहन लगे जिस दे चित दे अंदर दिन पर रात लगातार शैतान ही वसदा है, बुराई वसदी है, उन्हूं मत्तां देन वाले लख मिलन पर वो किसे दी मत लेंदा कदों है। उन्हूं कूक कूक के पुकार पुकार के कोई लख वारी एक गल कहे कि इस रस्ते दे उते ना चल, ए बुरा रस्ता है, इस रस्ते दे उते चलदा चलदा ठगिया जाएगा, पर वो किसे दी आवाज नूं सुनदा ही नहीं है, वो किसे दी गल नूं मनदा ही नहीं है, तरजीह देंदा ही नहीं है। शैतानियत दा इतना वड्डा जोर मन दे अंदर, शैतानियत दी इतनी वड्डी लहर मन दे अंदर चलदी कि ओ ना मां ना पिता ना किसे उपदेशक ते ना गुरु दे बोल नूं सुन के मनन वास्ते तैयार है। कूक ते रहे ने ना गुरु तेग बहादुर पातशाह, पुकार पुकार के कह रहे ने कि जाग रे मन जागण हारे, गुरबाणी कह रही है ना जाग रे मन जागण हारे, पर जागण दा नां लेंदा कदों है। कूक कूक के कह रहे ने सतगुरु के जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहां गाफल सोया, जो तन उपजे संग ही सो पी संग ना होवा। पर की असि इस गल नूं सतगुरु दी आवाज नूं सुन के मन लिया, साडा मन इस पासे नूं मुड़ तुरिया है। सतगुरु पुकार पुकार के कह रहे ने सुख नाही बहुता तन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। पुकार पुकार के कह रहे ने के सर्ब सुखा हर हर गुण गाए, तो की साडे मन ने सतगुरु दी इस आवाज नू सुन लिया। पुकार पुकार के हजूर कह रहे ने नर अचेत पाप ते डर रे, ते गुरु कह रहे ने नर अचेत ए बेहोशी दे अंदर चलन वाले मनुख पाप ते डर रे, पाप करन लगा संकोच कर पै खा ना कर, तो की साडे मन ने ए आवाज सुन ली। जद बंदे दे मन दे अंदर शैतानियत चलदी होवे, कोई भी शैतानी दा वेग चलदा होवे, काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगले, ते बंदे नूं ओही कुछ ही प्यारा लगदा है। जद ओनू असी प्यार कर लैने आ ते फिर ओनू छड्डन दा ते सवाल नहीं पैदा हुंदा, क्योंकि असी प्यार कर लिया है बुराई दे नाल, ते जद बुराई दे नाल प्यार बाणी गया है ते हुण फिर बुराई नूं छड्डांगे क्यों। मन ओनू कदी वास्ते भी छड्डन वास्ते राजी नहीं हुंदा जिदे नाल ए प्यार दी गंढ पा लवे, ते ओनू कदी अपना बनाउन वास्ते तैयार नहीं हुंदा जिन्नू मन प्यार ना करे, मन परवान ना करे। निरंकार दे संबंध विच मंदरां मस्जिदां गुरुद्वारियां दे अंदर कथा कहानियां चलदियां ने, मन निरंकार दे राह दे उत्ते नहीं तुरदा। क्यों नहीं तुरदा? क्योंकि मन अजे गुरबाणी दे बचना दे नाल निरंकार दे नाल प्यार बनाया ही नहीं है। मन इस राह दे उत्ते तां नहीं तुरदा क्योंकि मन ने अजे तक मन्या नहीं है, मन दी प्यार वाली तंद प्यार वाली गंढ अजे बजी नहीं है।
तो जिस दे नाल मन प्यार कर लेंदा है उनु हर हालत दे अंदर अपना बनाउना चाहुंदा है, जिदे नाल प्यार ना करे उनु छड़ देंदा है, ये मन दा सुभा है उनु छड़ देंदा है। अगर परमात्मा दे नाल मन दी सांझ बनदी नजर नहीं आ रही कथा कीर्तन करन तो बाद या सुनन तो बाद ते ए कहना पेगा कि मन परवान नहीं करदा कि निरंकार तू है, मन परवान नहीं करदा कि निरंकार तू सर्व व्यापक है, तू सुख दा दाता है, तू नेड़े तो नेड़े है। मन जे नहीं मनदा मन्या होगा साड़ी जुबान ने सुनिया होगा कन्ना ने मन ने नहीं मन्या। गुरबाणी दे अंदर एक वचन इस तरह भी आंदा है, पातशाह कहिंदे ने पाप बुरा पापी को प्यारा है, ता पाप बुरा पर पातशाह कहिंदे ने करिए कि पापी नू प्यारा बड़ा लगदा है। ते हुण पाप जिस पापी नू प्यारा लगदा है वो प्यारी चीज नू छड़ेगा कदों? प्यारी चीज नू ते उठ के मन हाथ पा के पकड़ लेंदा है, छड़दा नहीं। पाप बुरा पापी को प्यारा, गलतियां प्यारियां लगदियां ने, मुड़ मुड़ के बंदा उही गलतियां दोहरा रहा है। इस तरह ते नहीं कि अज गलती कीती है कल नहीं करदा, एक गलती नू हजारां बार दोहरा रहा है क्योंकि वह गलतियां प्यारियां लगदियां। गुरबाणी दे बचन प्यारे नहीं लगदे, दोहराउण तो गुरेज कर जांदा है, ते जिन्हों प्यारे लगदे ने वह मुड़ मुड़ के गुरबाणी दे बचना नू भी दोहराउंदा है। एक ही गुना सा

प्यार बड़ा करता है ते जिन्हों प्यार करता है उन्हों मन वार वार सुनना भी चाहता है, मन वार वार बोलना भी चाहता है, मन वार वार वेखना भी चाहता है जिन्हों प्यार करता है। ते जिन्हों प्यार नहीं करता उन्हों ना यह सुन के राजी है, ना बोल के राजी है, ना उन्हों वेख के राजी है, क्योंकि प्यार नहीं। पाप दे नाल अगर प्यार है तो पाप मुड़ मुड़ के आता है, परमात्मा दे नाल प्यार है तो परमात्मा की याद भी मुड़ मुड़ के आती है, दोबारा दोबारा आती है। तो अज दे समाहा वाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी कहन लगे, फरीदा कुकेंदिया कूकदिया चा गेंदिया उची उची पुकारदिया, कहन लगे मत्ती देंदिया नित निता प्रति मत दी गल सुनाई है। निता प्रति किसे नू उपदेश देईए, कहन लगे जो शैतान वंजाया, जिन्हां दे मन दे अंदर आण के शैतानी वस गई है, शैतान ने जिन्हां नू खजल खुआर कीता है, से कित फेरे चित, वो अपने चित नू रब वल फेरदे ही नहीं है, रब वल मोड़दे ही नहीं है। कथा कहानियां करनिया सुननिया आसान ने, पर चित नू परमात्मा दी तरफ मोड़ लेना यही कठिन है और यही महान है, यही साधना है। कहन लगे से कित फेरे चित, साडा चित मुड़ मुड़ के बुराई वल नू जांदा है, क्योंकि बुराई दे नाल साडा ताल मेल बनता है, इधर लियाना पैंदा है जबरदस्ती, क्योंकि इधर ताल मेल बनता नहीं है। काम दे नाल तालमेल बनता है, मन काम दी गल नू सुनदा भी है, काम बोलदा भी है, काम वेखदा भी है, काम लिखदा भी है, काम सोचदा भी है, क्योंकि उहदे नाल तालमेल बड़ा है। इस तों अगे लोभ, फिर इस तों अगे मोह, फिर हंकार, फिर निंदा, फिर चुगली, फिर तमाम बुराइयां, इन्हां नू अगर मन मुड़ मुड़ के कर रहा है तो यही कहना पेगा ये चित दे अंदर माला बन के चल रहे ने, इन्हां दा तालमेल साडे मन दे नाल है। ते जिहदे नाल साडे मन दा तालमेल बन जाए, उहनूं सुणदिआं बोलदिआं लिखदिआं मन उकताउंदा भी नहीं है, मन दुखी भी नहीं हुंदा। ते जिथे तालमेल ना बने उथे मन बहन तों गुरेज करदा है, दुखी हो जांदा है। कदी कदी मैं वेख्या संगत दे अंदर बैठदिआं इवें लगदा है जिवें समां बड़ा भारा हो गया, इस तरह लगता है जिवें समा बजर वर्गा हो गया, समा पास हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कथा दे नाल मन दा तालमेल नहीं है, कीर्तन दे नाल मन दा तालमेल नहीं है। ते जिहदा तालमेल गुरबाणी दे बचना दे नाल बन गया, गुरबाणी दे बचन सुनदा रहिंदा है, सुनाउंदा रहिंदा है, उहनूं इह पता ही नहीं रहिंदा कि घड़ी दी सूई अपने टिकाणे दे उत्ते पहुंच कदों गई है, किन्ना समा बीत गया नहीं याद विच रहिंदा। जद तालमेल बनदा है मन खुश हुंदा है, उसे कथा कहानी नू सुन के, तालमेल नहीं बनदा इहनू जबरदस्ती बिठा के सुनाउणा पै रिहा है, बड़ा दुखी हुंदा है, बाहर नू भजना चाहुंदा है, निकलना चाहुंदा है कि मैं ना बैठा, दौड़दा है ते फिर वार वार दौड़दा है। कहन लगे कि जो शैतान मंजाया से कित फेरे चित, जिन्हां दे मन दे अंदर है ही शैतानियत, दिने शैतानियत, रात शैतानियत, लगातार शैतानी सोचनी, शैतानी करनी, शैतान वर्गा जीवन बना के रखना, कह लगे वो अपना चित परमात्मा वल कदों मोड़दे ने, से कित फेरे चित। अगले श्लोक विच भगत फरीद साहब जी का दूसरा फुरमान, कह लगे फरीदा थियो थियो मैंने हो जाना, फरीदा थियो पवाही दब, पवाही मैंने पया, पया मैंने छड़क, छड़क मैंने रस्ता, दब जेड़ा कच्चियां राहां दे उत्ते का उगया हुंदा है, कुशा उगी हुंदी है, जिन्हों आपां पंजाबी दे अंदर, ठेठ पंजाबी दे अंदर दब कह देने हैं। भगत जी कहन लगे थियो, कहन लगे हो जा, ते भगत जी की हो जाइए, कहन लगे रस्ते दी पवाही दी दब बन जा, जो पैरां दे हेठ लताड़ी जांदी है दब बन जा। भगत जी इस तरह कह क्यों रहे ने? क्योंकि बुराइयां दे सामने आकड़ के तुरांगे, इन्हां दे नाल साडे लड़न दी समर्था नहीं है, आपां लड़ना भी चाहांगे साडे लड़न दी समर्था नहीं है। तो फिर निर्माण हो, ते निर्माण हो के सतगुरु दी शरण विच आ, गुरु कृपा दे नाल, तो फिर इन्हां दे सामने छाती तान के तुर भी सकेगा, लड़ भी सकेगा, ते जित भी पा सकेगा।

0: मिठिया रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान, फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस परम विच ते रहिंदा है कि बारों मेरे सिर दे उत्ते बजी हुई पग मैली ना होवे। हकीकत है कि मनुख नूं जितनी खबर बाहर दी है उना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बाहर दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए, सब की तमन्ना है। मन साफ होना चाहिए, किसी विरले विरले की लोचा है, सब की तमन्ना ये नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े, घर बार, मोटर कार, हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहिए है। इते सब नूं पता है, पर जिथे दीन दयाल निरंकार नूं वसदा रसदा वेखना चाहुंदे आ मन साफ चाहिए है। ये किसे विरले विरले नूं पता है, सब नूं नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बाहर मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बाहरों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है, तो अपनी मैल नूं वेख के बंदा आप ही बेचैन हो जांदा है कि इतनी सारी मैल। अपनी मैल नूं वेख के अपने आप तो आप ही नफरत कर बैठदा है, इतनी सारी मैल ते ओह वी मेरे अंदर। मैं ते समझदा सा नहीं है, पर बहुत ज्यादी है, बहुत ज्यादी। तो खैर ईसाई जगत दे अंदर, ईसाई जगत दे बानी हजरत ईशा जी, उन्होंने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं ही दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करदे सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनदा है तो ओ ए है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने, अवतारी तेरे प्रिय पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिए, साफ चाहिए। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनू कुछ ज्ञान है, बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना दी खोजबीन करदा रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करदा रहा। ओ मैल चाहे तन दे उत्ते या फिर तन दे उत्ते पए होए कपड़िया दे उत्ते, उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा। मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा। गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, ये गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है वो बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है। जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे भरिय हथ पैर तन देहे पानी तोते उतरस के है। ये बाहर दी मैल है। अगर हथ पैर भर जाते ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ, मैल उतर जाएगी। साबण नू वरतों विच लै आओ, मैल उतर जाएगी। भरिय हथ पैर तन देहे पानी तोते, पानी दे नाल तो लो, उतरस खे लगी हुई मैल उतर जाएगी, चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गुण लईए उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कह लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल उह भी उजले हो जाणगे, साफ हो जाणगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए, मैल अंदर चली जाए, ते अंदर दी मैल नूं बाहर कढ़ना होवे धोणा होवे, तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि भरिए मत पापां कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना उह पाप आया, अपराध नहीं आया। इस जगह दे उत्ते इस तरह नहीं कि अपराध लफज आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपण वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, भावे दोवे गुणा दोवे दोष दोवे तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच, क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्षा, तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उहदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आण के जिहड़े बुरे कर्म करने असीं शुरू कर देने आ, उहदा नाम अपराध है। अपराध नूं डर हुंदा है हथ घड़ी दा, कानून दा, समाज दा, पर पाप नूं ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसी दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहवांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानदा। बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानदा तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है, नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है या सतगुरु नूं पता। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है, ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है, निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां, अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने उह साडे बाहर मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने। साडा बहना उठना चंगा है, तुरना फिरना चंगा है, बोल बाणी चंगी है, लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ, मनमुख हाँ, ये मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदे चलां, डॉक्टर इकबाल ते इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसी होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रहे, पत्नी दे सामने हो रहे, धी दे सामने हो रहे, समाज दे सामने हो रहे, ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रहे। गिरकट अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर वे जाना पिया है, उत्थे कोई सोख समाचार है, इहदे अंदर भावें गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनूं आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर पावे जैलसी है, अंदर पावे ईर्ष्या है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्होंने बधाई देन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह आदत है, कुशल है, ये जानता है कि खुशी दा मखौटा कदों पाउणा है ते कमी दा मखौटा कदों पाउणा है। खैर ये मेरा विशा नहीं सी, अंदर जो बुराई है उहदा नाम पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जाती है उहदा नाम अपराध। बस एक नुकता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध ताई बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह दी फसल दा बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने मुढ़ तो, उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहिणियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी इह मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने, उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो, फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो, फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहिणियां नूं आप कट देंदे हो, दो टहिणियां कटदे हो, दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहिणे दे उत्ते नवीआं शाखावां जन्म लै लैंदियां, इक टहिणी नूं कट रहे हो दूजी नवीं जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रहेगी ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करदे ने, कहण लगे भरीए मत पापां कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहण लगे भरीए मत पापां कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सरफ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहण लगे ओह धुपै नावें कै रंग, धुप जाएगी, मायूसी दी लोड़ नहीं। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तों बाद ओह मैल जाणी है, उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन, ओह धुपै नावें कै रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण सोच करै दिनस अर रात, इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना, सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करै दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारों सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारों तो बिल्कुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नूं की असर पएगा? ठीक है लोकां दे सामने इन्नी को तेरी इमेज बन जाएगी बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ये बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा होवे। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आण के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, ये मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे दी वाधू सोचे मैं उहदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लैके चली जांदी उहदी गल कर रहा। हुणे आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड्डी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उते कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां सच पाई है। हुण एक बेनती मैं होर करां, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे भी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने भी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, ये पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाई है, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, भी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो इहदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानूं आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाईए, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां, तां सुच बनदी है अंदर दी, सच पाईए जे सच दे गुणा नूं अपने हिरदे विच वसा लवे। ते असीं की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाईए। असीं एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाईए। एक जगह ते मैनूं गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल, गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रहा, क्योंकि फरीद साहब जी दा हुक्म अज इस तरह दा आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होए, मत मैली होए जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, मैं सिर भी मिट्टी ने खा जाना, मैं ते सिर ते बत्ती पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जांदा है, इहदा ध्यान किसे नूं है, तन मैला ना होए इहदा ध्यान सानूं सारिआं नूं है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रसना दे बचन ने। हुण इन्हां बचनां नूं सुनन तों बाद जे बंदे दे मन दा भरम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अग्ञानता दे हनेरे विच ही इह खड़ा है, फिर ते इहनों ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे होवे मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावै ते नौंदा फिरे 68 तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नूं बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे नाही राम एयाना, लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना। लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे, कहन लगे इहदे नाल फर्क नहीं पैना। क्यों नहीं पैना? कहन लगे ना ही राम एयाना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनू अंदरों जानदा नहीं, ਉਹ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਅਗਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਓਏ ਮੈਨੇ ਉਹ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮੰਜ ਸਕਾਉਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਮਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਮੰਜਸ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਉਣ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਤਨੀ ਛੂਆ ਛੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁੱਚਤਾ ਰੱਖ ਲੋਗੇ? ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ रोक दिता गया कि तू तंबाकू सेवन नहीं करना। कारण सी उहदा, अज हर शराब की बोतल के उत्ते लिखा होया मिलता है सेहत लई हानिकारक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने गुरु नानक साहब जी की पाक बाणी ने सानू हुक्म ला के रोक दिता तू इस पासे नहीं जाना। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ खुले ने। अच थां थां दे उत्ते मीडिया दे अंदर रौला है कि एड्स दी बीमारी दा इलाज केवल परहेज है, पर धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने पा हुक्म रोक दिता कि बस संग एक ही शरीर दा चाहिदा है, बहुतियां शरीरां दा नहीं चाहिदा, तां कि तू तन करके भी तंदुरुस्त रहे, तन करके भी रोगी ना बने, तन करके तंदुरुस्त रहे, इस तरह दे नियम बनाए, मन करके तंदुरुस्त रहे, गुरबाणी तेरी चोली विच पाई, गुरबाणी दे नाल जुड़। पर साडा सारा जोर बाहरी सोचदे उत्ते लग जांदा है, अंदर सोच बनदी है नहीं बनदी है, इस पासे साडा ध्यान जांदा ही नहीं। ते मैं ते होर भी कई बारी हैरान हुंदा, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल जाना है ते इशनान करके जाओ, पर दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, दूजे दे कोल जाना है ते कोई परवाह नहीं, भावे कोई तीन दिन का नाता है नहीं नाता, ओदे कोल रौल लाउन जाना है ते कोई बंदिश नहीं है, एक दे कोल रौल लाउन जाना है ते इशनान करना लाजमी है। कम से कम मर्यादा ते एक बना लो, या ते कहो करके जाना है, या कहो सवेर दा कीता काफी है, या कहो हर रौल ते करना काफी, एक मर्यादा ते एक घर दी कायम कर लो। एक घर दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं है, एक गुरुद्वारे दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं है। खिमा चाहवांगा तो खैर गल मैं मैल दी कर रहा सा, तन दी मैल नालों मन दी मैल हजार गुणा बदतर है। मन दी मैल हजार गुणा बुरी है तन दी मैल नाल, मन दी मैल अति बुरी है, निरंकार दे घर दे अंदर प्रवेश करन ही नहीं देंदी। अगर किसी दे तन दे उत्ते पाए हुए कपड़े कालख दे नाल भरे होन, मिट्टी कटे दे नाल चिकड़ दे नाल भरे होन, या उहदा तन चिकड़ दे नाल भरिया होवे, कि आप उहनूं कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के मिलदे हो? अगला चिकड़ दे विचों निकल के आया होवे तो की कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के उहनूं आप मिलदे हो? मिलना चाहुंदे हो, पर ये कहिंदे हो कि पहला सजना इशनान पान कर, अपने तन दे कपड़े उतार, तन दे कपड़े बदल, तन दे कपड़े साफ कर, तन साफ कर, ते तां उहनूं आपां अपनी गलवकड़ी विच लै के मान देने हां। उस तो पहला ने जे तन मैला है ते असीं अपनी गलवकड़ी विच नहीं लैंदे, ऐलानिया कह देना चाहुंना जे मन मैला है ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गलवकड़ी दे विच भी नहीं आ पाओगे। गुरु ने वेखना है तेरा मन उज्जल है या नहीं है, पवित्र है या नहीं है। तन मैले वाले नूं असीं कोल नहीं बहन देंदे, मन मैले वाले नूं सतगुरु कोल किवें बिठाउणगे? सतगुरु दी गलवकड़ी दा निग किवें पा सकेगा जिहदा मन ही मैला है? चलो मैं होर एक बेनती उदाहरण वजों करदा चला। दुनिया दे अंदर मां वास्ते सब तो अमोलक दात, अमोलक चीज मां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाला बच्चा है। बच्चा बालपन दी उम्र दे अंदर अपनी अनजानता दे कारण अपने ही मल मूत्र दे नाल अपने तन दे कपड़े नूं भर लवे ते मां दीआं अखां वेख लैण कि बच्चे दे तन दे कपड़े लबरेज हो गए ने, भर गए ने बच्चे दे मैले दे नाल। तो हुण मां लिबड़े तिबड़े बच्चे नूं इकदम चुक के अपनी छाती दा निक नहीं देंदी। पहला मां की काम करदी है, बच्चे नूं चुकदी है, उहनूं इशनान पान करवाउंदी है, तन दे कपड़े ला देंदी है, बदल लैंदी है, दूजे कपड़े पवा के उहनूं साफ करके ते तां मां अपनी छाती दा निक देंदी है, उस तों पहला नहीं। हुण मन भी इस तरह ही, अगर मन भी लिबड़िया तिबड़िया है, मन मैला कुचैला है, ते गुरु दी छाती दा निक किवें पाओगे? मन पवित्र करोगे ते गुरु चरणा दे अंदर बहन दी जगह मिलेगी, वरना नहीं। तनासरी राग दे अंदर श्री गुरु नानक देव पातशाह दा एक बचन आंदा है, कहन लगे दाग दोष लगे हुए कपड़िया दे उत्ते दाग, ते मन दे उत्ते दाग कादे लगदे ने? मैलियां कर्मां दे। मन दे उत्ते दाग कादे लगदे ने? मैलियां सोचां दे। हजूर गुरु नानक साहब जी कहिंदे ने दाग दोष मुंह चलिया लाए तेरे मुंह दे उत्ते बड़े दाग लगे ने, दोष ने, अपराध ने, पाप ने, तेरा मुंह कालख दे नाल भरिया है, कलंकित है। कह लगे दरगह बैसन नाही जाए, जाए दा अर्थे जगह। कह लगे सच दे घर दे अंदर बहन वास्ते तेनू जगह नहीं मिलेगी। दरगह बैसन, बैसन मैंने बहना, नाही जाए, जगह नहीं मिलेगी। उत्थे आउणा है ते पूरा पवित्र होके आ, अधूरापन नहीं चाहिदा। जितना समा मनुखी मन दे अंदर पूरी पवित्रता नहीं आ जांदी, उतना समा खुदा दे अंदर ये लीन नहीं हो सकता, दूर ही रहिंदा। इहनू वार वार चांस मिलदा रहेगा, जन्म मिलदा रहेगा। ये जितना समा अपने आप नूं पवित्र नहीं कर ले, उन्ना समा परमात्मा दे चरणां विच बहन दा समा नहीं मिलेगा। एक बेनती मैं इस संबंध अंदर होर भी करदा चलां। साडे तन दे उत्ते जिहड़े पाए हुए कपड़े ने, वह कपड़े मैले हो जाण, शरीर विचों निकलण वाली मैल या बाहरी गर्दो गुबार दे कारण तन दे कपड़े मैले होए, वह कपड़े असीं ला के पत्नी दे अगे सुट देने, धो के साफ करके मैनू दे। अगर पत्नी नहीं है, मां दे अगे, भैण दे अगे, धी दे अगे या किसी दूसरे दे अगे कपड़े रख देने, कपड़े मेरे ने, धोण दा काम तू कर। बाहरी दुनिया दे अंदर यह दस्तूर चलदा है, कपड़े किसे दे ने, उन्हां नू साफ कोई दूसरा कर रहा है, धो कोई दूसरा रहा है। धर्म की दुनिया के अंदर मन के कपड़े नूं धोण वास्ते यह दस्तूर भी नहीं है। यह मन का कपड़ा मैला किया है, तुसी आप इनू धोना भी पैना है, तुहानू अपने आप में। यह मन का कपड़ा इस तरह का नहीं है कि इनू लाओ ते ला के किसी लौंडरी ते ले जाओ कि उत्थों मन धोवा के वापस ले आइए। कोई लौंडरी इस तरह की नहीं है। मन का कपड़ा इस तरह भी नहीं है कि इनू लाओ ते ला के मां भैन धी दे अगे रख दो कि कपड़े तू साफ कर। मन तुहाडा है, मैला तुसी कीता है, धोना भी तुहानू आप ही पएगा। हाँ एक गल जरूर है, तुसी अपने मन नू धोण वास्ते यतन करो थोड़ा, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहाडे ते रहमत करनगे बहुत ज्यादा। पर जे हिम्मत करोगे मन नू साफ करन दी तां, ते जे हिम्मत ही ना करो ते फिर गुरु की रहमत तो भी वांझे रह जावांगे। आप ही इनू धोना पैना है, आप ही असी इनू मैला कीता है। कुछ नुकते ने जो मैं तुहाडे चरणां विच बयान करन दा यतन कर रहा, इन्हां नू हिरदे दे अंदर वसाउण दा जरूर यतन करियो। जदों कोई अपने घर दा कूड़ा करकट इकट्ठा करके, झाड़ू पोचा करके, घर दे अंदरों कागज मिट्टी कट्टा इकट्ठा करके लफाफे विच पा के उह तुहाडे घर दे दरवाजे दे अगे रख जाण, तो तुसी बर्दाश्त कर लोगे? दूसरे दे घर दा कूड़ा करकट पाया है उन्हें बैग दे अंदर, वो बैग सुट के चला गया एन तुहाडे दरवाजे दे अगे जिथों तुसी अंदर आना है या बाहर निकलना है, बिल्कुल मेन डोर दे सामने रख के है। बर्दाश्त नहीं होएगा, गरीब तो गरीब भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मन की सफाई करनी है ते इस तरह का ध्यान रखना पेगा। दूसरा कोई मेरे मन के घर के अंदर कूड़ा करकट सुटन का यतन तो नहीं कर रहा, कोई दूसरा मेरे कन्ना के अंदर चुगली सुटन का यतन कर रहा है, तो परहेज करो भी कूड़ा तेरा है, तू मेरे मन में सुटन का यतन क्यों कर रहा है। अगर कोई तुहाडे कन्नां विच निंदा दे बोल, काम दे बोल, बुराई दे परे बोल पा रहा है, ते गुरेज करो, परहेज करो, उन्हूं कहो भई अपना कूड़ा करकट, अपनी बुराई अपने पास रख, तू अपने घर का कूड़ा मेरिया कन्नां दे राही मेरे मन दे घर विच सुट्टण दा यतन क्यों कर रहा है। कूड़ा दूजे दा हुंदा है, सानू मन दी समझ नहीं, असी दूसरे का कूड़ा चोली फैला के प्रवान करी जाने। जे कोई दूसरा चुगली करता है दूजे की, असी हां विच हां मिलाने, कोई निंदा करता है हां विच हां मिलाने, ते बड़ा खुश होके दूजे की निंदा ते चुगली दे अंदर हिस्सा लेने, बड़ा खुश होके निम्मा निम्मा हसदे हुए भी नजर पैने दूसरे की चुगली सुन के, दूसरे की निंदा सुन के। पर यह नहीं जानते कि जो सुन रहे हो, जो सुना रहे हो, इन्हें ही तुहाडे जीवन की रुकावट बन जाना है, इन्हें जीवन के अंदर दीवार का काम करना, इन्हें तुहानू पार लगन नहीं देना। प्यारे इन नुकत्या नू अपने जीवन के अंदर अपनाओ अगर जीवन नू रोशन करना चाहते हो। गुरबाणी का फरमान है, मन मैले सब किश मैला, तन तोते मन हच्छा ना होए। कहन लगे तेरा मन मैला है ते एवें समझ लै कि सारा कुछ ही मैला है, तन नू धोण दे नाल तेरा मन हच्छा नहीं होना। कबीर साहब बैठे सन खड्डी दे उत्ते, कपड़े बुन रहे सन। कपड़े बुनना कबीर साहब जी दी करित है, कबीर साहब जी दा कम है, धंधा है। कपड़े बुन रहे ने खड्डे दे उत्ते बह के। निकलिया एक बिलकुल सुच दे नाल जुड़िया होया, बारी सुच दे नाल पखंड दे नाल जुड़िया होया कोलों ब्राह्मण। ब्राह्मण ने वेख्या कि कबीर साहब खड्डी बुन रहे ने और खड्डी दे नेड़े बह के उन्होंने लंगर छकना शुरू कर दिता। अचानक उसे समय किधरे चलते चलते माता लोई जी आ गए प्रशादा लेके घरों, ते कबीर साहब उथे ही हाथ धो के खड्डी दे कोल ही बह के प्रशादा छकना शुरू कर देंदे। उस पखंडी ब्राह्मण ने तनज भरे दो बोल गए कबीर साहब जी नूं मुखातब हो गए, क्योंकि सारा बनारस तकरीबन तकरीबन पखंडी ब्राह्मणा दे नाल भरिया सी। अगर बनारस दे अंदर संती होंदे ते गुरबाणी दे अंदर यह बोल कदी ना आउंदे कि गली जिन्ना जप मालिया लोटे हाथ निबग, कोई हर के संत ना आखिया बनारस के ठग। बनारस दे ठग मशहूर ने, बनारस दे संत मशहूर नहीं है, ठग मशहूर ने। निकले कोलों तनज भरे बोलां दे अंदर गल कह दिती। कहन लगा जिस बंदे नू भोजन छकन दा नहीं पता कि किथे बह के खाना है, उहदा जीवन किन्ना को सुचा होएगा, उहदा जीवन किन्ना को पवित्र होएगा। कबीर साहब जी आखिर बोल पै, कहन लगे माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। आमे झूठे चाहे भी झूठे, झूठे है मरे अभागे। कहन लगे मां झूठी पिता झूठा, उन्हां दी औलाद उन्हां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाली ओ भी झूठी। आ रहे ने झूठ दे नाल भरे, जा रहे ने झूठ दे नाल भरे, आउण जाण दा इह सिलसिला मुक्या ही नहीं। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, ठाओ मैंने जगह। पंडित जी दस दे ते जाओ के सुची जगह केड़ी। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बह सो भोजन खाओ, जिथे बह के मैं भोजन खावा ए दसदा ते जा के जगह केड़ी है। मन नू पवित्र करन दे नाल निरंकार दी हजूरी दे अंदर प्रवेश की मिल जांदी है। तन नू पवित्र रखो जरूर, पर सारा जोर तन दे उते ना दियो, सारा जोर मन दे उते दियो। मन दी सफाई वल ध्यान दियो ताकि मन करके हजूर दी हजूरी दे अंदर प्रवान हो जाइए। पंडित निहाल सिंह जी बहुत आला कविता नू जन्म देंदे ने। उन्होंने मैल दे संबंध विच एक बोल लिखिया है। वो कहिंदे ने एक मनुख व्याया गया, उहदे घरवाली दा नां सी चंद्रमुखी। पुराने समय दे अंदर शरीर दे लक्षणा नू वेख के, सुहप्पन नू वेख के, नक्शो निगार नू वेख के नाम दे दिया करदे सन चंद्रमुखी। नाम सी चंद्रमुखी, ते पति चंद्रमुखी दी शोभा करदा, थकदा नहीं सी। चंद्रमुखी दे चेहरे नू वेख वेख के आनंद पाउंदा सी, ते इह गल कहिंदा सी चंद्रमुखी मैनू लगदा है तेरे वर्गा सुंदर मनुख दुनिया दे अंदर दूसरा नहीं है। पंडित निहाल सिंह जी लिखदे ने कि एक दिन चंद्रमुखी दे नक विचों मैल निकले। उन्हें हाथ दे नाल नक दी मैल नू साफ कीता, पर थोड़ी जी मैल उहदे चेहरे दे उत्ते उहदी गल दे उत्ते लग गई, थोड़ी जी मैल। उहदे पति ने गलानी कीती, नफरत कीती उस मैल नू वेख के। ते मैरज करदा रहिंदा अक्सर ही कि नफरत हुंदी मैल तों है। जे दूजे दी मैल दिस रही है दूजे तों नफरत है, जे अपनी मैल नजर आ जाए ते अपने तों भी नफरत है। दूजे तो नफरत कर दे हो, जे कोई तुहानू पुछे भी क्यों, आपां अक्सर कह दिंदे आ इह बड़ा बुरा मनुख है। भई की बुरा है, उहदे हथ पैर बुरे ने, चेहन चक्कर बुरे ने, की बुरा है। आपां कह दिंदे आ नहीं, उहदा सुभाअ चंगा नहीं है, सुभाअ बड़ा बुरा है। इहदी सोच बुरी, इहदा वेखणा बुरा, इहदा चलना बुरा, इहदा खाणा बुरा, इहदा मानसिक मंडल बुरा। दूसरे की बुराई तो नफरत है, ते जे ओही बुराई अपने विच दिस पे तो की अपने नाल प्यार करोगे। पर शर्त यह है कि जे दिस जाए, पर दिसदी दूसरे की बुराई है, अपनी बुराई बंदे नूं दिसदी नहीं है। अपने वेखदा है जदों भी गुण वेखदा है, दूसरे की जदों भी वेखदा है बुराई वेखदा है, औगण वेखदा है। तो पति कहन लगा, चंद्रमुखी पहला चेहरे की मैल साफ कर, तेरा चेहरा वेखण दे योग नहीं है। पति देव रोज कहिंदे सी मेरे नालो सुंदर कोई दूजा नहीं, अज की होया? पति कहन लगा, चेहरे नूं जाके साफ कर, तेरे चेहरे दे उत्ते नक विचों निकली हुई मैल जम गई है। तो निहाल सिंह जी लिखदे ने, हे मल मूत कसूत सबै पुन और सलेखन बांजन भारी, नाक की मैल जबै निकसै कर नाहे संभार सो पोच उतारी। कर दे नाल मैल साफ कीती है, पर किधरे चेहरे दे उत्ते लगी रह गई है। आख्या, कर नाहे संभार सो पोच उतारी, तो मुख चंद्र कहे जेह को तब नाहे निहार सकै वो नारी। ते अखी हीर दे उत्ते पंडित जी ने अपने वालों संदेश दिता, कहन लगे, पिख रंचक पिख मैंने वेख के, रंचक मैंने थोड़ी जी, पिख रंचक मैल गिलान करे, सठ मैंने मूर्ख, सठ जानत नाही अहे के सारी। हे मूर्ख मनुख, जानदा नहीं है कि तेरे अंदर इस तरह की मैल ही मैल भरी पई, तेरे नौ द्वारियां विचों मैल ही बाहर आ रही है। जितने नौ द्वारियां दे नाल ध्यान जोड़ के वेखो, अंदर दी मैल बाहर आ रही है, पर वो शरीर कमैल है। मन दी मैल निरंकार नूं परवान नहीं, ते तन दी मैल सानू परवान नहीं। असी चाहुंदे आ तन साफ होवे, निरंकार चाहुंदे ने मन साफ होवे। तो अज दे इस महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी दा फरमान, कहन लगे, फरीदा मैं भुलावा पग दा, मैं इस भरम विच रहा कि पग मैली ना होवे, मन मैला होवे कोई डर नहीं, पग मैली ना होवे, मत मैली होए जाए, बड़ा ध्यान रखे तन दे पाए हुए कपड़े मैले ना हो, पगड़ी मैली ना होवे। गैला रूह ना जाने के सिर पी मिट्टी खाए, नहीं जानदा कि जिस मैल तो मिट्टी तो परहेज कर रहा है, एक दिन मिट्टी तेरे उत्ते आ जानी। मिट्टी पई है तोलवी, कोई ना हो सी मित, मिट्टी तेरे उत्ते आ जाएगी, सिर नो भी निकल जाएगी, खा जाएगी। तो मैल तन दी ओ भी बुरी, मैल मन दी ओ भी बुरी। तन भी साफ चाहिदा है, पर तन मैला भी होवे कम चल जांदा है, पर मन मैला होवे ते कम नहीं चलदा। तन साफ किवें रखना है, पूरी कायनात नूं समझ आ गई है। मन साफ किवें रखना है, ए समझ केवल विरलियां विरलियां नूं, हजारां विचों विरलियां नूं मिली। कोई विरला धर्म दे मार्ग दे उत्ते चलण वाला मन दा परहेजगार है, तन दे परहेजगार सारे ही हैं। रस्ते दे अंदर मिट्टी कट्टा होवे, चिक्कड़ होवे, पानी होवे, असीं सिद्धा तुर के नहीं निकलदे, रस्ता वला के निकल जाने हैं। क्यों? सामने ते चिक्कड़ है, सामने चिक्कड़ होवे, चुगली होवे, निंदा होवे, ईर्षा होवे, दबैच होवे, असीं मन नूं उहदे विचों गुजारदे हां, नहीं परहेज करदे कि इत्थों निकलन करके मन भी मैला होएगा। कबीर साहब ताई ते चेतावनी देंदे ने कि साकत संग न कीजिए दूरों जाइए पाग। मन नूं लैके इधर जाएगा साकत दे संग दे अंदर, ते मन तेरा अवच मैला होएगा। भगत फरीद साहब जी दे इस बचन नूं आधार बना के कुछ कहन दा निमाणा यतन कीता गया।
1: फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़,

रब ना पूजन तुद फरीदा रोटी मेरी काठ की लावन मेरी भुख जिन्ना खादी चौपड़ी घने सहन गे दुख रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पी

रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाप पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो, आप चल रही लड़ीवार कथा सरवण करदे आ रहे हो। सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों तीन श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। पहला श्लोक फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध। सबे वस्तु मिठिया रब न पूजन तुध। गिनती विच भगत फरीद जी कुछ मिठिया चीजा नू ले रहे ने। नंबर एक दे उते शक्कर, नंबर दो दे उते खंड, नंबर तीन दे उते निवात। ते निवात कहिंदे ने मिसरी नू। मैं अर्ज कीती सी कि सब तो पहला मिसरी मिश्र देश दे अंदर बननी शुरू हुई। इनू ताई मिसरी कहा जाता है क्योंकि मिश्र दे अंदर सब तो पहला बननी शुरू हुई कुजे दी मिश्री। भगत जी कहन लगे शक्कर खंड मिश्री गुड़ माखियो। माखियो का मतलब शहद, मांझा मझां दा दुध।

0: कोई विष्टा दा मल मूत्र दा ढेर होवे उहदे उत्ते आप कपड़ा पा दिओ सुंदर दिशाला कीमती जाके पा दिओ उहनू ढक दिओ गंदगी दे ढेर नू उपरों उपरों ढक दिओ और उपर उपर जाके फुलां दी महक भी करो फुलां दा छिड़काव करो चंदन दी लकड़ कोल रखो तरह तरह दे परफ्यूम उहनां दा छिड़काव करो आखर दुर्गंधी ते अंदरों लपटां दे राही उठदी रहेगी दुर्गंधी ते बंद नहीं होएगी अगर उस जगह तो दुर्गंधी नू दूर करना चाहते हो ते जिहड़ी उत्थे मैल है मैल नू चुके दूर करो परफ्यूम छिड़किया तां लाभदायक कि उत्थों गंदगी दा ढेर चुके पासे करो और फुलां दी माला तां लाभदायक कि जे उत्थों गंदगी दे ढेर नू साफ कर रहे हो गंदगी दा ढेर ते ज्यों दा त्यों है फर्क इना है उहदे उत्ते दिशाले पाई जा रहे हैं उहदे उत्ते फुलां दी माला पाई जा रहे हैं उत्ते परफ्यूम लाई जा रहे हैं शरीर दी उदाहरण मैं दे रहा साडे मन दे अंदर दुर्गंधी दा ढेर है बारों बारों असीं अपने गले दे अंदर फुल पा लईए अपने कपड़े चंगे पा लईए कपड़िया ते परफ्यूम महंगा ला लईए बड़ी महक कोलों आवे पर अंदर जिहड़ी बदबू मैल दबी है जिन्ना समा उन्हूं साफ नहीं करदे निरंकार दे दरबार विच जान दे योग नहीं बन पाओगे तो भगत जी कहन लगे कि अंदर तेरे हिंग वाली बदबू रही सो बेड़ी बेड़ी का मतलब है वेड़े रहना वेड़े का मतलब घिरे रहना घिरिया रहना है हर वक्त दुर्गंधी दे नाल काम दे नाल तेरा मन घिरिया रहिंदा है क्रोध दे नाल मन घिरिया रहिंदा है निंदा चुगली तेरे मन नूं वेड़ी रखदी है ईर्षा द्वेष तेरे मन नूं घेरा पाई रखदी है इस तरह मन दे अंदर दुर्गंधी बड़ी है मन दे अंदर मैल बड़ी है खोट बड़ा है चाहिदा सी इस जगह दे उत्ते कस्तूरी कस्तूरी दी सुगंध पर कस्तूरी तेरे बाहर रह गई ते दुर्गंधी तेरे अंदर चली गई हिंग तेरे अंदर चली गई हिंग मन विच है पर कस्तूरी दी महक तेरे शरीर ते है चाहिदा उल्टा सी कस्तूरी अंदर चली जांदी आप पासा जी दी वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सी पाशाह ने एक बचन फरमाया सी कि जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ पट मैने रेशम जिन्ना दे मन ने रेशम वर्गे कोमल मन दे अंदर रेशम है मन मुलायम है मन दे अंदर कोई टोई टोया टिब्बा नहीं मन खुरदरा नहीं ते जिहदा मन मुलायम है उत्थे ईर्षा निंदा चुगली द्वेष नहीं होएगी जिहदा मन मुलायम है उहदी जुबान दे बचन वी ते मुलायम ही होणगे कोमल ही होणगे दुखावे नहीं होणगे तो जिन पट अंदर गुरबाणी दा फैसला ए है जिन्हां दा अंदर है रेशम वर्गा पट वर्गा बाहर गुद्दड़ बाहर भावे उहनां दे तन दे उत्ते गुद्दड़ भावे खद्दर है सादा मुरादा लिबास है ओ रब जी दे घर दे अंदर परवान है जिन्हां दे बाहर गुद्दड़ मैला कुचैला कपड़ा खद्दर दा कपड़ा पर अंदर रेशम वर्गा कहन लगे ओ परवान है पर जिन्हां दा अंदर खद्दर वर्गा है अंदर खुरदरा है अंदर तिखा है अंदर अग बलदी है पर बाहरों बड़ा मुलायम बनन दा यतन कर रहे ने रब जी दे घर विच ओ परवान नहीं है गुरबाणी दा फैसला है जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार ओ भले मनुख ने जिन्हां ने अंदर नूं सवारिया है ते जिन्हां बाहर नूं सवारिया है अंदर नूं सवारना भुल गए ने ओ भले नहीं है अज इस श्लोक नूं आधार बना के जो मैं बेनतियां आप संगत दे चरणां विच रखण दा नमाणा यतन कीता इको ही सार तत निकलदा है इस श्लोक विचों के अपने अंदर नूं सवारो अंदर नूं सवारना असलियत नूं पाउणा है अंदर नूं सवारना परमात्मा दे नेड़े होना है कोई फर्क नहीं पैना तुहाडी चमड़ी दा रंग की है तुहाडे नक्शो निगार की ने तुहाडे चोले दा रंग की है तुसी पग गोल बनदे हो पग नुक्कर वाली बनदे हो कोई फर्क नहीं पैना इन्हां गल्लां दा फर्क बाहर है निरंकार दे घर विच फर्क नहीं पैना किसे रंग दा कपड़ा पा के आ जाओगे चल जाएगा पर मन दे उत्ते प्रेम दा रंग होना बड़ा जरूरी है मन दे उत्ते कोई दूजा रंग लेके आओगे वो नहीं चलेगा तन ते दूजा रंग चल जाएगा मन दे उत्ते नहीं चलेगा उत्ते प्रेम दा रंग प्रवान है ओही चलेगा तो अंदरों हिंग वाली बदबू बाहर कढ़नी है ते ओ तां निकलेगी जे अपने अंदर कस्तूरी नूं लेके जांदे रहोगे कस्तूरी नूं अंदर वसाओगे कस्तूरी वसदी जाएगी हिंग बाहर निकलदी जाएगी बदबू बाहर निकलदी जाएगी। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਿਓ ਯਤਨ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ, ਰਤੀ ਰਤੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਵਾਰਦਿਆਂ ਸਵਾਰਦਿਆਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤਾਲ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡੋਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਗੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਖਰੋਦੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਉਕੇ ਚੋਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਿਆ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਮਨ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
1: ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਰੀਦਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਬਣ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ, ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ ਬਿਰਹਿ ਵਿਸ਼ਾਵਨ ਲੇ, ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨਮ ਸਾਨ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨਮ ਸਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਲੋਕ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁੰਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਬਾਲਪਣ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਬੁਢਾਪਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਪਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਾਲਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਲਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਲਪਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਪਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਲਪਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। और मुकम्मल तौर ते पाया। दो बच्चियां दा जिक्र आउंदा है, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। इन्हां दोवां महान पुरखां दी बाणी ते गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं है, ना भगत ध्रुव जी दी ते ना प्रहलाद जी दी, पर इन्हां दोवां दा नां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर बड़ी बार आया। और ये जो मैं बाणी दे दो बचन पढ़ के सुनाए, ये भगत कबीर साहब जी दे ने। भगत कबीर साहब परमात्मा दे नाल जुड़न दी उदाहरण दुनिया दे सामने जद रखदे ने, ते इन्हां दो बच्चियां नूं दो भगतां नूं उदाहरण बना के पेश करदे ने। राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद, दोवें छोटी उम्र दे भगत ने। तकरीबन 5 साल दी उम्र दे अंदर भगत ध्रुव नूं वैराग बनिया है और रब्बी पेंडे दे उत्ते निकल तुरिया है। तकरीबन इन्नी उम्र दे अंदर भगत प्रहलाद नूं चोट मिली है, ठोकर मिली है, ते रब्बी ज्ञान नाजल होना शुरू हो गया छोटी उम्र दे अंदर। बाकी तकरीबन तकरीबन जिन्हें बच्चे ने उन्हां दा बालपन खेडन दे अंदर ही बीत जांदा है, रब्बी रस दे अंदर नहीं बीतदा, रब दा ज्ञान भी नहीं हुंदा, रब दे नाल सांझ भी नहीं हुंदी। बालपन बीतदा है पर बीतदा है खड़ौणियां दे नाल सुरत नूं जोड़ के, इस तों अगे सुरत जांदी नहीं है। जवानी बीती तो प्रश्न ये पैदा हुंदा है, मैं जवानी दे अंदर पाया की ते जवानी दे अंदर गवाया की। जवानी दा मिल जाना काफी नहीं, ये भी ते वेखना पएगा ना जवानी दे अंदर मैं की खत्म कीता है ते की मैं वादा कीता है। क्योंकि भगत फरीद साहब जी गल जवानी दी कर रहे ने, जोबन जांदे ना डरां, जोबन मैंने जवानी। हुण जवानी चली ते जानी है, चाहे ये चंगे तरीके दे नाल जवानी दे दिन बीत जान, इन्हें तां भी नहीं रहना, जवानी ने खिसक जाना है, ते भावे मंदे तरीके दे नाल दिनां नूं बताइए जवानी ने तां भी तुरी जाना है, रुकना इन्हें साडे पास नहीं है। हजार यतन करो जवानी रुक जाए, रुकदी नहीं है। रोकण दा लोक यतन भी करदे ने, वालां दा रंग बदल बदल के, काला कर करके, होर तौर तरीकियां दे नाल, पर कदों रुकदी है, चली जांदी है। परमात्मा दी नेत दे मुताबक आउणी सी आई है, परमात्मा दे अटल नियम दे मुताबक इन्हें जाना है और जाना ही जाना है, इन्हूं रोकण दा कोई उपाय नहीं। वैसे चलो मैं मुखसर बेनती रखदा चला, इन्हां तिन्नां पैरां विचों मनुख दा प्यार सब तो ज्यादा है जवानी दे नाल ही, लगाव सब तो ज्यादा है जवानी दे नाल ही। किसी नूं उम्र पुछो किन्नी है, उम्र घटा के ही बयान करदा है, 60 वाला, 50 वाला, 40 वाला, 30, उम्र घटा के बयान करदे ने। अंदर जो सोच कम कर रही है कि उम्र वड्डी दसन दे नाल कहणगे वडेरा हो गया, बुढ़ा हो गया। वालां दा रंग चिट्टा दिसन दे नाल लोग कहणगे बुढ़ा हो गया। ना वालां दा चिट्टा रंग ही रहे ते उम्र भी छोटी घटा के झूठ बयान करके दस दिओ, लोकां दी समझ विच ही आवे कि अरे जवान है। पर कईयां दा तुरन दे अंदाज बदल जांदे ने, चाल बदल जांदी है, चाल ही दस रही है बुढ़ा है, पर वो कबूल नहीं करदा मैं बुढ़ा। कईयां दा बहना उठना, चेहरे दीयां चरूड़ियां, अंग अंग उच्ची आवाज दे के कह रहा है तू बुढ़ा है, पर वो मनदा नहीं है कि मैं बुढ़ा। खैर मेरा विशा नहीं, किसी वक्त मैं फिर वजाहत करांगा। जवानी बीत जांदी है, चाहे नूं चंगी बता लो चाहे मंदे तरीके दे नाल बता लो, पर वेखना है कि मैनू जवानी दे अंदर मिलिया की ते मेरे कोलों जवानी दे अंदर गया की है। जद आप पूरी ईमानदारी दे नाल बह के विचार करोगे कि जवानी विच पाया की ते गवाया की, जवाब तुहानूं मिल जाएगा गवाया बहुत कुछ है ते पाया कुछ भी नहीं है। जे पाया है ते बड़ा थोड़ा पाया है, बहुत थोड़ा पाया है। एक बेनती मैं होर करदा चला, जेब दे अंदर धन दा होना काफी नहीं, ये भी पता होवे मैं धन दे के इहदे बदले विच की खरीदना है। धन दे बदले दे अंदर कौड़े अति कौड़े जहर वर्गे पदार्थ मार्केट विचों मिलदे ने, ते धन दे बदले